0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
1: बी बैक बैक राइट आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक
2: द एलोपैथिक औ द द्वाना उमनो द पारा द उम्मीद जेरे हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल खो बल्कि द हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल ब्रांच ओस्तासु पखार सवाबई की प्राणिस्त सुविधा कटास

मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसुर बाबा मदरसे सरा देवाल प देवाल हैदर मुमन जनरल अस्पताल सुर सवाबई होमोस प दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 031 93 94 हैदर मुमन।

0: हाँ बिल्कुल जनाब, नन प्रोग्राम डेडिकेट को मा इलियास सीमा लुबायना ददीप हनुमान डेडिकेट को मा थैंक यू सो मच यो दुनिया मनाना बिल्कुल राजे थे प्रोग्राम इसे जोड़े गए बाहर कोर के दाखा शांति क्यूट गुलू नमा शुमान हुई सही था ना ख्याल वैसे आते हैं हाँ डेरा मनाना थैंक यू सो मच लेट मी चेक हुए देर अस्सलाम वालेकुम जी हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो हेलो बिल्कुल जना तासु बियाट रायो के पता न लगी जमुग बदे सेट बाने सर अस्सलाम वालेकुम जी
1: वालेकुम अस्सलाम जल्दी तंग ले
0: रोजो टिक टाक सोक दिकम से न पखेर आगले
1: अरशद दो सवाबई ना
0: अरशद हो
1: हाँ जी हाँ
0: अरशद संग गुलाब अखे कोर के खैर दे वक्त साथ खती रीगी
1: खैर
0: दे अल्लाह करम ने अरशद दारा तो है प्रोग्राम ने दिसर ना हो रहे थे कहना लाने दे हो रहे थे दिसर ना
1: प्रोग्राम हो जमा मो रहा हुई हो जो खुद इतवार दो रोज लग पा रहे हैं मैं दूसरे कार्य से जी
0: ना इतवार पर तो फ्री का ना
1: हाँ जीवन फ्री मनन और तलाश से मना हुआ जो ना
0: ठीक शो और मोरजान है और प्रोग्राम
1: हाँ जी मोरजान है मेरे प्रोग्राम है उस पास प्रोग्राम मेरा मजा के जी
0: देर बगोरे दागी बड़ी रजिया ख्याल सादी लास वाला खुलावा तंदे वाला खुलावा मख वाला खुलावा खपी वाले चाबी कवा हाँ
1: सही
0: जी आओ डेर जात में ख्याल साथी दारा तो हुआ है सासो फकोर के दटोलो ना वड़ू के माशूम या माशूम सुख
1: दा जमा फकोर के जमा वड़ू के रोज सलमान नहीं मिले
0: सलमान उम्र है सुमर दे
1: उम्र पीजे कार दे
0: दस वर्द दमीने बस सलमान वर्ता है कबल से नुमर ता आखले दासी
1: मैं वर्द गुड़ाई वाई गुड़ाई
0: खास सलमान द गुड़ाई वाई खास सही द सही द जान सर इली कम दारे खाता जी कम मास नन लेस राजीन दा बस जान सर उस ली कम खा ठीक शो
1: मोर में आज सलामुन कीजी
0: वालेकुम सलाम या बाज सलामुन ना दुआगाने वरता वाई दुआगाने खा
1: सही से सही दे
0: डेरा मना ना दजान बख्याल साथ अरशद दलवी अल्लाह पामान जी थैंक यू सो मच जी बिल्कुल जनाब जमगे सासु साथ चिकम दे अन्नी मगेन टाउश वाला बिल्कुल यौनी मगेन टा प्रोग्राम बाद दे बिल्कुल टोल टा प्रोग्राम के दजरे द कुमिना दजरे द तलना हर गले वां बिल्कुल तासु बरा दे प्रोग्राम सासु प्रोग्राम दे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अच्छा था दा खबर कुम कर दे इंसान फलाइब के जगम दे डिफिकल्टीज राजी तकलीफ ना राजी दा बता बर्दाश्त के खा सही था अस्सलाम वालेकुम हेलो

बिल्कुल जनाब जमुग ये सासु यवा घंटा पा तेरा व्यापार सासु नाहले में इजाजत निम प्रोग्राम जिगम देगा उचले दो वसर वसर सासु कार्ड उमर आल सासु मैसेज उमराजी जी।

अच्छा दी सलाम सर मानी सर संगे और शो को माशा डी नाइज दबई एफ एम नर्सो दादा कलना पठानी गर्ल थैंक यू पठानी गर्ल एंड मानी सर पति खबर खरा पंजा वाख लहूँ जिंदाबाद मुंग आहो जी पुख्ताना जी ना थैंक यू सो मच बेहद शुक्रिया आपका और आपकी मोहब्बतों का एन 03255557074 परमानेंट कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान का ये प्रोग्राम रोजाना आप 12 से 1 बजे तक सुन सकते हैं एंड

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है, बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

आप सुन रहे हैं दिलबर FM सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर FM 94 सवाबी। दिलबर FM

0: जुमा 2 अक्टूबर, हफ्ता 3 अक्टूबर और इतवार 4 अक्टूबर 2026। इस अजीम रूहानी इज्तिमा में खुसूसी खिताब फरमाएंगे हजरत अहमद रजा कादरी साहब, सैयद बिलाल फारूकी साहब और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, जबकि खुसूसी नातो मनकबत के लिए सैयद अमीर हुसैन साहब भी शरीक होंगे। इस बाबरकत मौके पर उलमाए किराम, नातखां हजरात और दूरों नजदीक से आने वाले आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहिब्बाने औलियाए किराम खुसूसी शिरकत फरमाएंगे। खास तौर पर याद रखिए, आखिरी और जरूरी महफिल बरोजी इतवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुनक़िद होगी। ख्वातीन के लिए पर्दे का खास इंतजाम भी मौजूद है। तमाम आशिकाने रसूल, मुहिब्बाने औलिया और अहले इलाका से अपील है कि इस बाबरकत रूहानी इज्तिमा में भरपूर शिरकत फरमाएं।
1: सालाना उर्से मुबारक 2026, दरबारे आलिया कशका शरीफ, बरास्ता पंजगरा हवेलियां, जिला एबटाबाद। आइए इस बाबरकत रूहानी इज्तिमा का हिस्सा बनिए। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम और औलियाए कराम की निस्बत से अपने दिलों को ईमान, जिक्र और रूहानी फयूज़ो बरकात से मुनव्वर कीजिए। दरबारे आलिया कशका शरीफ आपकी आमद का मुंतजर है।
2: मजीद मालूमात और राब्ते के लिए इन नंबर्स पर राब्ता फरमाएं। 0300-59-00-380, 0322-918-8148, 0331-500-2839।
3: खुश खबरी हगा ठोल बीमारान चा हड़ुकी माछी याद माते दो नपस गलत पेवन शिवी चिदचा दखपो गुतो रगुन बन शिवी दी औ या गुते बेहरकत शिवी औ द चाचे दखपो द कुंडो दनन लाड़ खत्म शिवी कोपे दर्दुना औ टकार कवि हगाटोली जनाना चिदचा खपे औ लासुना सुनकीगी औ हगाटोल मरीजान कमचे दमला द मुहरो याद पटो मरीजान हुई याद माशुमानो खपी कगी हुई नु दहागे टोलो मरीजानो द पारा द खुशालई खबर उस बाद हर इतवार पर रोजबांदी सहर द अतो बजो नवाखली माजीगर तरसलो रो बजो पोरे द इस्लामाबाद और द पेखवर नुमवड़े डॉक्टर आर्थोपेडिक एंड ट्रामा सर्जन डॉक्टर तारिक रहीम सेब MBBS MCPS FCPS एक्स रजिस्ट्रार HMC पिशावर सहर द अतो बजो नवाखला माजीगर तरसलो रो बजो पूरी तासो तशरीफ रवड़े से नुपा तैयार साथे बिलाल प्लाजा अल सैद CNG टा महामख कुंडा मोड़ जहांगीरा रोड सवाबी। मजीद द मालूमात द पारा याद नंबर अगस्तो द पारा पदे नंबर राबितो के 0314-15-13-232 यानी के 0314-15-13-232।
4: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए। हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
5: वेलकम टू FM 94 ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम Swabi From 5 a.m. to 1 a.m.
6: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
7: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
6: रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।
8: या हबीबी या मुहम्मद या नबी।
6: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।
7: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन।

आप सुन रहे हैं दिलबर FM सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर FM 94 सवाबी। दिलबर FM 94।

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए। हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
2: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए। हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
3: पल चैनल रेडियो दिलबर।
4: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिलबर आपके संग संग।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर।
2: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिलबर आपके संग संग।

ओके जनाब, चतरमन दरिंद को सुख सुख जो वक्त ड्राइविंग कभी आगे चाहे मच ड्राइविंग कैरफुली है ड्राइविंग डेट जात इख्तियार से रखो लगना डेट जात इख्तियार से रखो ड्राइविंग हाँ

0: आगे जनाब लेडीज एंड जेंटलमैन खतरा मंद रिदम को बिल्कुल चाचा उस ट्यून कर दे एफएम 94 रेडियो जिलवर सवाबी आगे दे मच दा सोखरा अगले दे दा दा मासूम मासूम आवाज इच दे दा सोख दे दा स्टासु एजे दे जी स्टासु एजे रागले दे कना हला मना गा वंडियां तो मवाजु के गे रेडियो बन करे दे आखा रेर खल कर रिंगुनों की कना वी अक्सर लजम अंगे दाखुएं दे बाई कसम दे वी कसम दे कना वही जुम रखले खुब बन रूदू मा वही दे की प्लान के रहा पस रिंगु कुछ पास आकिब जान प्रोग्राम तरा गले दे
1: ਜਿਵੇਂ ਆਮੇ ਖੁੱਕੇ ਨੂੰ ਪਸੜਕੇ ਮੇ ਦਰ
0: ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਨਾ ਪਾਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰ ਮੇਰੇ ਰੇਡੀਓ ਲਗਾ।

0: Right after the commercial break.
1: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं, बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज, जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं, दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंट के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर करने के लिए 0331-9341

0: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिल पर आपके संग संग।
1: ये है रेडियो दिल पर, आपकी दिल की आवाज,
2: आपकी दिल की आवाज। मामू टाबू का खुले दे।

जब जिस्म से रूह निकल सकती है तो लोग, तो दिल से लोग क्यों नहीं। ये शेर आपने कभी सुना? जब जिस्म से रूह निकल सकती है तो दिल से लोग।

दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे कि छोड़ा है किसी ने, न मंजिल है न मंजिल का निशान, कहां पे लाके छोड़ा है किसी ने।

0: बिछड़ते वक्त उसने कहा था, न सवाल करना न जवाब मिलेगा, मुझे भूल जाना करार मिलेगा, मैं उस मुकाम पर
1: तेरी मर्जी।
0: हम उस मुकाम पर थे, न सवाल किया न जवाब मिला, न भूल सके न करार मिला। कभी आपके साथ ये हुआ है? बिछड़ते वक्त उसने कहा था, न सवाल करना न जवाब मिलेगा, मुझे भूल जाना करार मिलेगा। हम उस मुकाम पर थे, न सवाल किया न जवाब मिला, न भूल सके न करार मिला। मुश्किल से मिला था एक शख्स,
1: कर दे मुझा।
0: मुश्किल से मिला था एक शख्स, मुश्किल में डालकर चला गया।
1: लिपटा था मेरा आंसू गिरा।
0: दिल सुकून चाहता है जो तेरे सिवा मुमकिन नहीं।

0: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिल पर आपके संग संग।
1: ये है रेडियो दिल पर, आपकी दिल की आवाज,
2: मामू का बोका खुले दे।

0: कॉल की अब रिकॉर्डिंग हो रही है।
1: हाँ, वालेकुम अस्सलाम, सो रकम दे रहा कायनात खबर है कई जी खा लगे तेज खबर हो के ठीक ठाक है
0: कॉल की अब रिकॉर्डिंग हो रही है।
1: हाँ, वालेकुम अस्सलाम, सो रकम दे रहा कायनात खबर है कई जी खा लगे तेज खबर हो के ठीक ठाक है। अल्लाह करम दे, प्रोग्राम दे वो रहे तो टोल।